FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50

0: ₹50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे। यानी हमें समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स।

10:05 पर सफर सुरीला सा प्रोग्राम में कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रचनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे, और इससे पहले 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

दिन में 11 बजे फोन इन प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन आप सुनेंगे और 11:30 पर लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रांदे।

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। दो बजकर 15 मिनट पर समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 पर अमृत बाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शबद। शाम 5:00 शाम 6:00 रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00 समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद, और कुछ और पंजाबी गीत आपके लिए पेश किए जाएंगे शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद।

ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो दिन भर आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे अब से कुछ ही देर में आप 6:35 पर सुनेंगे प्रोग्राम श्री रामचरितमानस, 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8:15 पर प्रोग्राम चित्रलोक, माफ कीजिए प्रोग्राम त्रिवेणी, और 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। अभी आप सुन रहे थे झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संदीप प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धन।

श्री के उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें रेखा और धैवत कोमल है, दोनों मध्यम है, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है। इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुने ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती।
1: बीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
2: सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और इस गीत को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसे हमने छोटे बाबू फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाजें थी, इंदिवर की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत सुना। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। उनकी भावपूर्ण और मधुर धुनें हमारे दिलों को सदैव हमेशा आकर्षित करती हैं। ये कर्णप्रिय संगीत हमारी अमूल्य धरोहर है। सुनते हैं ये गीत।

0: भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीत अदित्य की आवाज थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने धुन बनाई थी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब एक बहुत छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: बैंक मैनेजर फिल्म का गीत आपने सुना, मन्ना डे के स्वर में अनवर फरूखाबादी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो यूं ही चूलिया किसी ने,
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।

0: जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था रंगीन रातें फिल्म से था। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी। केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत इस गीत से।

कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो, हम याद करते हैं। मल्हार फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था। नमन है संगीतकार रोशन को, जिनके गीतों की ताजगी, भाव और मिठास दिल को छू लेते हैं। अगला गाना बरसात की रात फिल्म से लीजिए, सुनिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चित्रलेखा, साहिल लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: क्यों?
0: नहीं
1: क्यों ना?
0: आज की रात तो दिल

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजा ये हीर रांझा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना सुनिए मदन मोहन के बनाए संगीत पर।

गीत आप सुन रहे हैं नीला आकाश फिल्म से, आवाजें मोहम्मद रफी आशा भोसले की हैं, राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं मदन मोहन की तर्ज।

आकाश फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने तर्ज बनाई थी। इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने हीर राजा फिल्म से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की, कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है इसे मदन मोहन ने। अब आपको ये गीत सुनवा रहे हैं नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपके लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
1: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: Peacekeeping has been a crucial element of
5: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: Across 10 of the 11 active missions.
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर

0: जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुरमुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुरमुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुरमुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे।

0: इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा।

0: देश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम त्रिवेणी
3: सुने। त्रिवेणी।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें श्रेया घोषाल जावेद बसीर की थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था। शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लुटेरा फिल्म का ये गीत।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज मोनाली ठाकुर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें।

अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: शीशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर। फोन 8950063224।

श्रेया घोषाल और एमजे श्रीकुमार की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे प्रीतम और फिल्म का नाम था भूल भुलैया। ये है गुरु फिल्म का गीत।

0: हरिहरन और अलकायागमी की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे ए आर रहमान। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद फिर से सुनिएगा।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: फिर से स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं?

0: मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रोग्राम आज का अखबार कुछ ही पलों में।
3: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: आज का अखबार।
2: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते जाएंगे और ये सफर हम इस तरह से करेंगे तय। लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं भैया, आज अपने शहर सिटी ब्यूटीफुल की बात करते हैं। चंडीगढ़ देश में नंबर 1 आया है। किस मामले में भाई? वो मामला है, एक रिपोर्ट का खुलासा है कि खर्च में चंडीगढ़ देश में नंबर 1 है। अब खर्च में नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि जो आय होगी वो अच्छी होगी, उसमें भी स्थान अच्छा होगा। तो बेंगलुरु के बाद आय में दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ का नंबर है और खर्च में चंडीगढ़ देश में नंबर 1 है। और आय का जहां तक मामला है उसमें बेंगलुरु के बाद दूसरा नंबर चंडीगढ़ का आता है। अब पंजाब का अमृतसर भी पीछे नहीं है, अमृतसर भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। तो समृद्ध विरासत और कारोबार के लिए पहचान रखने वाला अमृतसर अब उपभोक्ता खर्च के मामले में भी देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो गया है। प्रति परिवार वार्षिक उपभोग व्यय के आधार पर अमृतसर देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाने के साथ मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, रायपुर और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में आगे निकल गया है। मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, रायपुर है और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में आगे निकल गया है अमृतसर। प्रति परिवार उपभोग व्यय के मामले में चंडीगढ़ देश में पहले स्थान पर है। औसत पारिवारिक आय के मामले में भी चंडीगढ़ दूसरे और अमृतसर प्रमुख शहरों में शामिल है। अब यह खुलासा है, एक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक है, कंज्यूमर इकोनॉमी का है और एक संयुक्त रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर में एक परिवार की औसत वार्षिक उपभोग जो खर्च है वो 15 लाख रुपए है। वहीं 2025-26 में शहर की औसत पारिवारिक आय 19 लाख रुपए दर्ज की गई है। तो औसत पारिवारिक आय के मामले में बेंगलुरु

31 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर रहा है और चंडीगढ़ 28 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। वडोदरा और दिल्ली में ये औसत 26 लाख रुपए है। इसके बाद मुंबई और पुणे का स्थान आता है। चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों भी इस मामले में चंडीगढ़ से पीछे हैं। और जैसे कि हमने बताया कि प्रति परिवार उपभोग खर्च के मामले में चंडीगढ़ देश में पहले स्थान पर है। यहां एक परिवार का औसत वार्षिक जो खर्च है वो 19 लाख रुपए है। तिरुवनंतपुरम और वडोदरा 17-17 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तिरुपुर और सूरत भी टॉप 5 शहरों में शामिल है। तो ये है एक रिपोर्ट के खर्च में चंडीगढ़ देश में नंबर 1। ये है हमारे शहर की स्थिति खर्च करने के मामले में। और अब बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम के लिए हर अखबार में अलग अलग खबरें हैं, अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं अखबारों के। और एक अखबार लिखती है कि मौसम जो रहेगा 6-7 दिन उत्तर पश्चिम मध्य भारत में बारिश के आसार जो हैं वो कम बताए गए हैं, यानी मानसून का ब्रेक बताया गया है। अब हफ्ते भर कहते हैं कि सताएगी उमस, 20 जुलाई के बाद फिर बारिश का दौर जो है वो संभव होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो ट्रफ है वो हिमालय की तलहटी की ओर खिसक गई है। इससे मध्यम और पश्चिम भारत में शुष्क हवाएं सक्रिय हो गई हैं। हवा में मौजूद नमी की वजह से हफ्ते भर तक उमस सताएगी। इससे कई शहरों में तापमान 32-37 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद फील लाइक महसूस होने वाला तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो ये है कुल मिलाकर जो मौसम है। लेकिन अगर शहर के मौसम की बात करें तो लोकल अखबारों में भी अलग अलग से खबरें हैं। एक अखबार लिखती है कि बूंदाबांदी और धूप से फिर उमस बढ़ी, 18 तक बारिश के आसार नहीं है। लिखा है कि 2-3 दिन से बूंदाबांदी ही हो रही है, मैदानों में मानसून की रफ्तार कमजोर है और मंगलवार यानी आज बादल छा सकते हैं, हो सकता बाहर छा भी गए हों, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है और कल फिर बादल छाएंगे, अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा और परसों फिर बादल छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है और पारा इतना ही रहेगा 36.1। और एक अखबार ने ये लिखा है कि आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, उमस से मिलेगी राहत। अभी जो चंडीगढ़ में हाल ही में बारिश हुई, उस बारिश ने धो डाला प्रदूषण, चंडीगढ़ की हवा हुई ग्रीन, यानी ये है मौसम का जादू, कभी कम कभी ज्यादा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन एआईआर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब एक नजर दौड़ाते हैं आज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। आज की अखबारों में हेडलाइंस हैं कि साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ 5 लोगों को दोषी करार दिया। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोप पर भाजपा का उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसटीआई से तलब की ताजा रिपोर्ट। एक मामले में एनएमसी सख्त, अब अधूरे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होगी पढ़ाई। दो दशकों से कश्मीर के पर्वतीय इलाकों का तापमान 1 डिग्री बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान में शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बना आकर्षण का केंद्र। ये क्यों बना? पिछले दिनों जापान की प्रधानमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संतूर वादन कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, इसीलिए जापान में शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बना आकर्षण का केंद्र। अमेरिका ईरान में जंग हुई तेज, रूस भी आया। रूस ने तेहरान भेजा प्रलयकारी विमान, ईरान ने फिर अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की मौत हो गई है, 63 लोग घायल हैं। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस। अब चलते हैं कारोबार की दुनिया में। खुदरा महंगाई पहुंची 4.38%, आरबीआई के लक्ष्य से अधिक। एक रिपोर्ट आई है कि भारत

0: के वित्तीय क्षेत्र में 29 लाख साइबर हमले, 4 साल में दोगुना से अधिक वृद्धि। अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। फीफा फुटबॉल कप की बात करें तो पहले सेमीफाइनल में आज दुनिया देखेगी मबापे और यमाल का कमाल, फ्रांस बनाम स्पेन। लेकिन लॉर्ड्स में एक नई क्रांति हुई है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बेटियों का वर्चस्व कायम, इंग्लैंड को 270 रन से दी करारी हार, और भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित कोहली से आशा, जीत की राह पर लौटने उतरेगा भारत। इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला आज है। और आखिर में एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के 17 मुक्केबाज एशियन अंडर 23 और अंडर 19 जकार्ता इंडोनेशिया में हो रही है प्रतियोगिता। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं ये भी सुन लें।
1: हाँ, ये भी अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS Care App। सोना खरीदने से पहले BIS Care App पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: वेलकम बैक दोस्तों, ये है म्यूजिकल ट्रैक।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: स्वागत है दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में। ये लाइव प्रोग्राम होता है, अखबारों से ली गई जानकारी साथ में म्यूजिकल नंबर्स इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। पंजाब में निजी स्कूल 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वाले दिन पंजाब के शहरों में धमाकों की धमकी से हाई अलर्ट। कंडी क्षेत्र के तलवाड़ा और हाजीपुर ब्लॉक के लोगों का रेल संपर्क का इंतजार 17 जुलाई को खत्म होगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करटोली रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे वर्चुअली जालंधर से। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर जिले में लगेंगे 1,50,00,000 पौधे। खर्च के मामलों में अमृतसर टॉप 10 में, एक रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सियासी खींचतान जारी है, पंजाब कांग्रेस की कलह पर रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंची है। हरियाणा चलते हैं। हरियाणा के नूह में 156 करोड़ की लागत से बनेगा 7 मंजिला 100 बेड वाला अस्पताल। पिंजौर बाग तक बनेगा 4-लेन कॉरिडोर, पिंजौर और गन्नौर मंडी में सौर ऊर्जा का होगा इंतजाम। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में की प्रगति, 2025 में राज्य में 919 सार्वजनिक स्टेशन। स्क्रैप वाहनों के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल, हरियाणा में ई चार्जिंग नेटवर्क भी होगा और मजबूत। पंचकुला में राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगा दिया श्रमदान। प्राकृतिक खेती का बनेगा अपना बाजार हरियाणा में, हरियाणा तैयार कर रहा अलग इकोसिस्टम, गुरुग्राम में होगी शुरुआत, हिसार में भी प्राकृतिक मंडी, हर मंडी में टेस्टिंग लैब की तैयारी। और SIR की बात करें तो हरियाणा में नहीं मिले 28 लाख वोटर, मतदाता सूची से होंगे बाहर। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की।

0: जयपुर। सोलन जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, कुमारी शीला बनी अध्यक्ष। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी में लंबित हिस्से का मामला, इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की बात, अधिकारों के लिए मांगा सहयोग। और हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने दिए परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के सख्त निर्देश। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: वेलकम बैक दोस्तों, अब एक नजर आज की स्थानीय समाचार पत्रों पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के लोकल अखबारों की। 17 जुलाई के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सुरक्षा का रिहर्सल, हाई अलर्ट पर शहर है। SPG ने संभाली सुरक्षा की कमान, प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे जीरकपुर पंचकुला बाईपास की आधारशिला। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, उमस से मिलेगी राहत, बारिश ने धो डाला शहर का प्रदूषण, चंडीगढ़ की हवा हुई ग्रीन। CSIO चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने विकसित की एक नई AI तकनीक, छोटी से छोटी वस्तु भी होगी स्टीक पहचान के साथ, अब ड्रोन की नजर से नहीं बचेगी कोई भी चीज। कालका स्टेशन पर 30 रुपए में होटल जैसी सुविधा, एग्जीक्यूटिव लाउंज में AC, इंटरनेट, मोबाइल चार्जिंग और मनोरंजन की व्यवस्था। चंडीगढ़ की सड़कों पर फिर किसान, थम गई रफ्तार, स्कूलों को करना पड़ा छुट्टी का ऐलान। शुक्रवार के जाम से सबक लेकर प्रशासन ने बदली रणनीति, फिर भी सेक्टर 36 चौक पर 20 मिनट थमा रहा ट्रैफिक। चंडीगढ़ में आंधी बारिश का खतरा, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें, नगर निगम की एडवाइजरी जारी, पेड़ों के नीचे वाहन पार्क ना करें। वार्ड 5 मनीमाजरा में लगेंगे 45 नए CCTV कैमरे। सेक्टर 40D में वन महोत्सव मनाया गया, पार्क में 70 पौधे लगाए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई महंगी, UG और PG के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की भी बढ़ेगी फीस। और आखिर में नाट्य महोत्सव में 15 जुलाई से गूंजेगा देशभक्ति का स्वर। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की।

तो दोस्तों ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम। अब प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है। जाने से पहले हम यही कामना करेंगे कि आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, अपना ख्याल रखते हुए अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाएं। अनिल पुंज को दी

0: अनुमति कल फिर इस प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजे हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
6: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
5: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज़ से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज़ जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। सांत पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं।

0: सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: बोरा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज सबसे पहले जुबिन नौटियाल की आवाज में इस गीत से होती है शुरुआत। साथ में है नीति मोहन,

अभी आपने जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में हेट स्टोरी 4 इस फिल्म से ये गीत सुना है।

सफ़र सुरीला सा प्रोग्राम में आपने पहले फिल्मी गाना सुना, अब बारी है एक गैर फिल्मी गज़ल की। फ़नकार हैं जगजीत सिंह।

0: अभी आपने जगजीत सिंह को सुना।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: वेलकम बैक दोस्तों, सफर सुरीला सा कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। फिल्मी और नॉन फिल्मी दोनों तरह की रचनाएं और गीत इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। अब बारी फिल्मी गाने की है, वो भी लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना है, सलिल चौधरी का संगीत है और ये फिल्म है अग्नि परीक्षा।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: सफर सुरीला सा प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं, और अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। निखिता गांधी की आवाज में ये गाना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफर सुरीला सा आधा सफर लगभग पूरा हो गया है इस सफर का 10:30 हो चुके हैं प्रोग्राम अभी जारी है इस प्रोग्राम के बाद 11 आप सुनेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम और 11:30 पर हमारा लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रा दे तो आइए अब आगे बढ़ें और अब बारी है फिल्मी गाने की किशोर कुमार का गाया हुआ ये दर्द भरा गाना हम प्ले कर रहे हैं ये फिल्म है अनुरोध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी

किशोर कुमार को अभी आपने अनुरोध फिल्म से सुना, आइए अब आपको एक गजल सुनवाते हैं गैर फिल्मी, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में।

अभी आपने उषा खन्ना के संगीत में सावन कुमार के लिखे बोल सुने। मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना था। फिल्म थी लैला। अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की।

0: अभी आपने ध्वनि भानुशाली और तेज की आवाजों में ये नॉन फिल्मिंग गीत सुना।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आपने सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में क्रोधी फिल्म से ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और अब प्रोग्राम के आखिर में ये नॉन फिल्मी गाना। तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना है,

0: अभी आपने तुलसी कुमार की आवाज में ये नॉन फिल्मी गीत सुना। इस गीत के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: FM Lifeline।
3: FM Lifeline के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। FM Lifeline का आज का हमारा विषय जुड़ा हुआ है कैंसर से। कैंसर की जो बीमारी है उसको सुनकर ही डर लगता है, परंतु आजकल इतनी नवीनतम तकनीक आ चुकी हैं सभी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। अगर इस बीमारी का सही समय पर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो इस भयावह बीमारी से आसानी से निजात पाई जा सकती है। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भावना राय को। प्रोफेसर हैं रेडियोथेरेपी व ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
3: और आज हम विशेषता चर्चा करेंगे जो कैंसर की समस्याएं महिलाओं में होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, किस किस तरह का कैंसर महिलाओं को हो सकता है।
4: वैसे तो सभी प्रकार के कैंसर महिलाओं में हो सकते हैं, पर अगर हम महिला स्पेसिफिक कैंसर देखें, कॉमन कैंसर जो महिलाओं में है वो है ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमनेस्ट है, उसके बाद है सर्विकल कैंसर यानी बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, साथ में थर्ड नंबर पे आता है ओवेरियन कैंसर जो हमारे बढ़ रहा है, दैट इज अंडेदानी का कैंसर
3: जी।
4: फिर हेड एंड नेक कैंसर्स हैं जो टोबैको रिलेटेड कैंसर हैं जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में कॉमन कैंसर्स हैं, और आजकल कोलोरेक्टल यानी आंतरियों के कैंसर में भी हम बढ़ावा देख रहे हैं, और साथ में लंग कैंसर्स मतलब जो टोबैको एसोसिएटेड के साथ कॉमन रहते हैं
3: जी। डॉक्टर भावना, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और जो आपने सर्विकल कैंसर बताया, ये केवल महिलाओं में ही पाया जाएगा ऑब्वियसली है, तो ये जो तीनों कैंसर हैं इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर पर हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, परंतु ब्रेस्ट कैंसर की पहचान किस तरह से होनी चाहिए और कौन सी जो उम्र है उसमें अधिकतर ध्यान रखने योग्य बातें देखनी चाहिए।
4: ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि एक ऐसे ऑर्गन का कैंसर है जो बहुत एक्सेसिबल है, तो इसमें जो इजिएस्ट वे है वो एक लंप है या कोई सोजिश या कोई एबनॉर्मैलिटी जो हम ब्रेस्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसके लिए वुमेन को अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो पहले तो अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट एनाटॉमी होनी जरूरी है, तो इसकी जो हम स्क्रीनिंग कहते हैं वो हम जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है जिसमें अपनी फेमिलियरिटी अपनी एनाटॉमी के साथ और बॉडी के साथ है, वो हम एज अर्ली एज 21 ईयर्स के आसपास रेकमेंड करते हैं कि एक लेडी जब पीरियड्स आते हैं उसके पहले वीक में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है और अपने ब्रेस्ट की एक नॉर्मल फील देखती हैं, और उसके रिलेशन में अगर उनको कोई आगे ब्रेस्ट में लंप महसूस होता है, कोई गिल्टी है या निप्पल की शेप ठीक नहीं है या इन्वर्टेड है जो कि पहले नहीं था
3: जी,
4: या कोई अल्सरेशन है या बगल में कोई गांठें नजर आ रही हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो डॉक्टर के पास जाती है। जरूरी नहीं है कि ऐसी चीज है तो वो कैंसर ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कैंसर नहीं होगी, पर अगर किसी एक पेशेंट में भी वो डिटेक्ट हो सकती है तो इट इज वर्थ वाइल। तो नेक्स्ट स्टेप रहता है फिर डॉक्टर के पास जाने का
3: जी।
4: तो अगर हम बाय रेकमेंडेशंस देखें तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम जल्दी शुरू करते हैं जिसमें मंथली या एवरी फ्यू मंथ्स एक लेडी अपने ब्रेस्ट एग्जामिन करती है। अबव एज ऑफ 30-40 हम लोग एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर करते हैं कि साल में एक बार 40 ईयर्स के अबव जो लेडी है वो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा लें। साथ ही में मैमोग्राफी है जो ब्रेस्ट का एक एक्सरे टाइप रहता है जिससे अर्ली डिटेक्शन काफी जल्दी मतलब वो पिकअप कर सकता है, तो वो जनरली रेकमेंडेड रहती है 40 इयर्स एंड अबव
3: जी जी जी
4: या।
3: तो ये इससे ग्रस्त होने की जो प्रोबेबल एज होती है वो क्या रहती है?
4: यूजुअली अराउंड 40-50s में मोर कॉमन रहती है
3: मेनोपॉज़ के
4: अराउंड दैट टाइम, बट हम लोग आजकल मोर एंड मोर यंगर

0: ग्रुप में भी देख रहे हैं, सो अबाउट 10% 11% केसेस यंगर एज ग्रुप में अंडर 40 भी हम देखते हैं
1: जी। अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो आगे का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से रहता है और अर्ली डिटेक्शन कितना फायदा करती है?
0: अर्ली डिटेक्शन ऑब्वियसली जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना ही अच्छे से उसका इलाज हो सकेगा। सो अर्ली डिटेक्शन डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है हर टाइप की बीमारी में। और इसका जो इलाज रहता है वो एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें हम कहते हैं कि मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें सर्जरी का रोल रहता है, सर्जरी के साथ रेडिएशन और कीमोथेरेपी। तो एक कॉम्बिनेशन रहता है जनरली इन सब तीनों मोडालिटीज का, और साथ में हार्मोन थेरेपी। सो वो सब चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो स्टेज पे, और जो हम ब्रेस्ट की पैथोलॉजी या टिश्यू देखते हैं उस पे, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका सीक्वेंस या वो कैसे देना है वो डिसाइड रहता है
1: जी। और अब हम आते हैं ओवेरियन कैंसर की ओर
0: जी।
1: इसमें क्या लक्षण नजर आते हैं किसी भी महिला को, और इसकी भी प्रोबेबल उम्र क्या रहती है?
0: सो ओवेरियन कैंसर, जिसको हम अंडेदानी का कैंसर कहते हैं, ये कैंसर अभी हम ऑफ लेट देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड अदर थिंग्स जो ब्रेस्ट के साथ भी रिलेटेड है। सो ओवेरियन कैंसर में प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिम्टम्स जल्दी नहीं आते हैं, या सिम्टम्स जो आते हैं वो बहुत ही वेग किस्म के होते हैं, जैसे पेट का फूलना, जैसे पेशेंट को गैस या जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स रहना। और अगर ये पेशेंट एडवांस्ड हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, या पेट में उनको लंप फील हो सकता है, भूख लगनी बंद हो सकती है, पेट में पानी भर जाता है, सो बाय द टाइम ओवेरियन कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं। ओवेरियन कैंसर का क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है और स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, इसलिए वन जस्ट हैज टू बी केयरफुल कि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। एज ग्रुप जो है वो नॉर्मली अगेन 50-55 एंड अबव में देखा जाता है, एंड इट एडवांसेस जैसे एज इंक्रीज होती है। एक चीज जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ परसेंटेज अराउंड 10% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, और ब्रेस्ट की या ओवेरियन की हो सकती है, तो वो जरूरी है कि ये कई बारी फैमिलीज में रन कर सकती है, और ये प्लस डिफरेंट एडिशनल मेलिग्नेंसीज भी फैमिली में रन कर सकती है
1: जी। जी, अगर किसी को पहले फैमिली में रहा हो तो उसे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए, अपना स्क्रीनिंग वगैरह करवाते रहना चाहिए।
0: डेफिनेटली अगर किसी को फैमिली में पहले मेलिग्नेंसी रही है
1: जी,
0: पहले तो किसी भी प्रकार की रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर ये हेरिडिटरी रिलेटेड या जिनमें प्रीडिस्पोजिशन रहती है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, कई बार मेल ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं, तो उसमें जरूरी हो जाता है कि अपने डॉक्टर की सलाह से आगे फॉलोअप किया जाए, क्योंकि वो फिर आगे टेस्ट देखते हैं, करते हैं देखने के लिए कि वाकई ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि नहीं है, और अगर है तो बेस्ड ऑन दोज प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट या आगे के जो फॉलोअप प्रोग्राम्स रहते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, वो डिवाइस किए जाते हैं।
1: और इसमें भी ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की तरह ही रहता है, लाइन ऑफ एक्शन वही रहता है?
0: ओवेरियन कैंसर में भी हाँ जी, लाइन ऑफ एक्शन ज्यादातर जो रहता है वो रहता है सर्जरी एंड कीमोथेरेपी
1: जी।
0: तो इसकी सीक्वेंसिंग विल अगेन डिपेंड ऑन किस टाइप की बीमारी है, क्या स्टेज है, हेरिडिटरी, प्लस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आजकल जो हम अकाउंट में लेते हैं आगे मैनेजमेंट, बट ब्रॉडली इन्हीं कैटेगरीज के अंडर आता है
1: जी। और आपने जैसे कहा कि दिनचर्या में जो हमारे बदलाव आए हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं, उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है, और साथ ही में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी आपने यही कहा, तो ये जो दिनचर्या में बदलाव आए हैं या हमारे लाइफस्टाइल जो बदला है, उससे किस प्रकार से ये कैंसर बढ़ रहा है?
0: सबसे पहली बात तो ये है कि लॉन्जेविटी बढ़ गई है, मतलब दिस इज अ गुड थिंग कि जैसे जैसे एज बढ़ गई है, हमारी लॉन्जेविटी बढ़ गई है, वैसे वैसे कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है, बिकॉज विद एज कैंसर इंसिडेंस इंक्रीज होता ही है। सेकेंडली रिस्क फैक्टर्स, हम लोगों के लाइफ स्टाइल्स बहुत चेंज हो गए। अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फास्ट फूड्स, सिंथेटिक फूड्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टबैको रिलेटेड फैक्टर्स, मॉडर्नाइजेशन, हम लोग का जैसे अर्बनाइजेशन लाइफ है, बच्चे लेट हो रहे हैं, हम लोग पुश कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ सकता है, ओवेरियन कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। सो ऑल दीज टुगेदर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, दे डू कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज रिस्क
1: जी। जी जी,
0: इसमें कुछ रिस्क प्रिवेंटेबल होते हैं और कुछ रिस्क नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं।
1: तो प्रिवेंटेबल रिस्क्स जो हैं वो क्या क्या रहेंगे, क्या एक्सरसाइज को दिनचर्या में लाना चाहिए, और क्या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में लानी चाहिए?
0: एक तो है डायरेक्ट फैक्टर्स जो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, और एक रहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स जो हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं वो है मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आ जाता है मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, एक्टिव लाइफस्टाइल, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एक वो आ जाता है। देन सेकेंडली रिस्क फैक्टर्स, अगर हम पर्टिकुलरली डिजीज स्पेसिफिक बात करें तो सर्विकल कैंसर, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे,

0: वो एक रिस्क फैक्टर, उसमें सीधा एक वायरस है जो रिस्क फैक्टर है, जिसको हम HPV कहते हैं, तो उसको हम बिल्कुल ही प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल उसको वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. एंड देन कम द जनरल रिस्क फैक्टर्स जो आपको इसके रिलेशन मैंने बताया, लाइक यू नो आजकल हमारी एक बायोलॉजी होती है, ह्यूमन बायोलॉजी, हम उसको जैसे पुश कर रहे हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन आर नॉट डूइंग, सो दोज आर द थिंग्स जिनमें रिस्क रहता है, सो दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्मोकिंग, जो बहुत सारे कैंसर्स को अकाउंट करती है. अराउंड 40% ऑफ कैंसर जो इंडिया में है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आर रिलेटेड टू स्मोकिंग. So that is one of the major factors. And pollution, जैसे हम lung cancer में देख रहे हैं.
1: एक caller हमारे साथ online है, उनसे बात कर लेते हैं. FM Lifeline में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार जी.
1: नमस्कार, डॉक्टर भावना राय हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी, PGI चंडीगढ़. आप प्रश्न पूछे अपना.
2: हाँ सर, मेरी वॉइस को ना पॉलिप है.
0: पॉलिप है,
2: मुझे पूछना था. हाँ पॉलिप.
0: हाँ जी,
2: पॉलिप इनकी जो बच्चेदानी है ना उसके अंदर है.
0: हाँ जी.
2: हाँ जी, तो मैंने वहाँ पे दिखाया था बच्ची में, तो उन्होंने बोला था कि जिस टाइम ब्लीडिंग ज्यादा होगी ना फिर लेके आना. तो आज मेरे को 2 साल हो गए, ब्लीडिंग उतनी हुई नहीं है, नॉर्मल होती है. अब फिर मैंने बीच में भी गया था तो कहने का जब ज्यादा होगा फिर लेके आना.
0: जी, तो उन्होंने देखा है ना, उसको एग्जामिन किया है.
2: हाँ जी.
0: हाँ जी, ठीक है. फिर अगर डॉक्टर ने एग्जामिन किया फिर जैसे वो कहते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए.
2: मतलब ज्यादा देर हो जाए तो कैंसर कैंसर का खतरा तो नहीं हो रहा.
0: देखिए, उसकी वजह से खतरा नहीं हो सकता, पर एक डॉक्टर जांच ही करके बता सकते हैं कि वो किस टाइप का पॉलिप है. और अगर वो आपको कह रहे हैं एग्जामिन करके कि इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको दिखाने की जरूरत है, तो जैसे वो आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं आप वैसे वैसे प्लीज चेकअप कराते रहिए.
1: जी, धन्यवाद. तो डॉक्टर साहब, जैसे ये श्रोता भी पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है अगर किसी भी भाग में महिला के, तो लोगों को डर लगता है कि बाद में ये कहीं किसी और कैंसर की समस्या में ना बदल जाए. तो इसी तरह से फाइब्रॉइड की भी बड़ी समस्या देखने को मिलती है, तो उनमें भी कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब किस तरह से लेना चाहिए उस तरह की समस्या को.
0: सो फाइब्रॉइड जो यूट्रस में है वो बहुत ही कॉमन समस्या है, हार्मोन रिलेटेड समस्या है जो लेडीज में काफी देखी जाती है, जिससे ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है पीरियड्स के दौरान और भी सिम्टम्स होते हैं. तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनको दिखाना जरूरी रहता है. ऑल्दो इंसिडेंस कम रहता है, बट ओकेजनली यस फाइब्रॉइड्स में मेलिग्नेंसी हो सकती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी कहते हैं, जिसको हम यूट्राइन सार्कोमास कहते हैं. सो वो आपके जो डॉक्टर हैं वो ही देख के बता सकते हैं. ऑल्दो इट इज वेरी अनकॉमन, बट उसमें वो फिर बड़ी सारी चीजें देखते हैं कि ये फाइब्रॉइड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है किस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके चेंजेस क्या आ रहे हैं. तो जब भी आप एक डॉक्टर को दिखाते हैं वो हमेशा अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसके बेसिस पे आगे आपको एडवाइस करेंगे कि आगे क्या करना है. सो दे आर द राइट पीपल टू एडवाइस और वो मॉनिटरिंग करते हैं.
1: जी,
0: कोई चेंजेस के लिए
1: मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: तो अब हम आते हैं सर्विकल कैंसर की ओर. सर्विकल कैंसर के बारे में वैक्सीनेशन को बहुत लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इसकी एडमिनिस्टर कर देनी चाहिए, डोज कब करनी चाहिए और क्या क्या इसके लिए अभी तक उपलब्ध करवाया जा सका है.
0: तो सर्विकल कैंसर हमारी कंट्री में सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है और ये कैंसर कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल कैंसर है. जिन कैंसर्स की अभी तक हमने बात की है वो कुछ हद तक प्रिवेंटेबल नहीं है, तो उसमें हम सिर्फ उनको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. पर ये एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बनने से रोक सकते हैं. तो अराउंड 75-80% जो कैंसर्स हैं वो HPV 16-18 रिलेटेड हैं, जो एक टाइप ऑफ वायरस है. और अराउंड 85% कैंसर्स किसी फॉर्म में HPV डिफरेंट स्ट्रेन्स के रिलेटेड हो सकते हैं. सो जैसे कि डिफरेंट वायरसेस के लिए वैक्सीन डेवलप हुई है, जैसे पोलियो हुआ है या कोविड हुआ है, उसी प्रकार HPV के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें बाहर के देशों में क्लियरली दिखा दिया है कि दैट रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द डिजीज.
1: जी जी.
0: सो अभी WHO इसका एक इनफैक्ट प्रोग्राम भी रोल आउट किया है, जिसमें 2030 तक वो इरेडिकेशन की बात करते हैं इस बीमारी को वैक्सीनेशन के द्वारा. सो उसका जो एज ग्रुप है वो यंग बच्चों में लगता है. सो 9-13 इज दी एज ग्रुप जहां पे ये वैक्सीन शुरू हो जाती है और 45 इयर्स की एज ग्रुप तक दी जाती है.
1: जी जी.
0: सो बेस्ट टाइम जो है वो स्कूल गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को देने का है.
1: और वंस इन अ लाइफ टाइम लगती है.
0: वंस इन अ लाइफ टाइम अभी हम श्योर नहीं है कि वेदर दैट कैन बी गिवन, बट डेफिनेटली जो यंगर ग्रुप्स हैं उसमें रिकमेंडेशन है 2 बार देने की और ट्वाइस, जैसे 0 and 6 months, जैसे अभी दिया तो 6 महीने के बाद. बियॉन्ड 11-12 ईयर्स जो रिकमेंडेशन है उसमें हम 3 बारी वैक्सीन को देने का कहते हैं, 0, 1 and 6 months पे.
1: जी डॉक्टर रॉय, हमने वैक्सीनेशन की बात तो पहले कर ली और पूछना चाहेंगे आपसे कि सर्विकल

0: कैंसर को डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, और डायग्नोज और ट्रीटमेंट किस तरह से होता है?
1: सो सर्विकल कैंसर में सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग्स को कहते हैं। ये नॉर्मली अगर मतलब जो भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज परसिस्टेंट कर रहा है तो एक लेडी को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए।
0: जी जी।
1: और अगर ये डिजीज जब बढ़ने शुरू होती है, कहीं एडवांस स्टेजेस में यूरिन करने में या स्टूल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, टांगों में दर्द हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, अगर ये बीमारी फैलती है तो दूसरे सिम्टम्स लाइक खांसी, वेट लॉस, ये सब चीजें हो सकती हैं। सो इसके जो कॉमन कॉजेज रहते हैं वो जैसे मैंने बोला HPV वायरस की वजह से है।
0: जी जी।
1: बट इसमें हाइजीन या लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में देखा जाता है तो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक तरफ हम ब्रेस्ट और ओवेरियन में कहते हैं लेट मैरिजेस, इसमें अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, हाइजीन मतलब जेनिटल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो स्मोकिंग इनडायरेक्टली एक रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो ऐसे जैसे ही आजकल अर्बनाइजेशन हो रही है, हम ग्रेजुअली ये सर्विकल कैंसर डिक्लिनेशन पे है, थोड़ा कम हो रहा है, नंबर वन से नंबर टू आ गए, फिर भी हम एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड वाइड सर्विकल कैंसर के। सो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आज की डेट में अगर एक बीमारी को हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें वो वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए।
0: जी। और अगर डायग्नोस हो जाता है किसी को ये, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है?
1: सो सर्विकल कैंसर में प्राइमरली जो बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होगा उसमें सर्जरी का रोल रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये थोड़ी सी लोकली एडवांस्ड होगी, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो रहेगा वो रेडिएशन का रहेगा, जिसमें हम साथ में थोड़ी कीमोथेरेपी ऐड करते हैं रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए।
0: और सभी प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं उसमें स्टेजेस एक आम व्यक्ति को बताई जाती हैं कि ये स्टेज पे हो, आप इस स्टेज पे हो। तो जो पहले हमसे चर्चा में लिया था ब्रेस्ट कैंसर, उसमें कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिस पे आने पर ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जा सकता है? वैसे तो बहुत कहना मुश्किल है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर अर्ली डिटेक्शन की बात आपने की है, वैसे कौन कौन सी स्टेजेस इसमें हर तरह के कैंसर में होती हैं जो हम तीन डिस्कस कर रहे हैं?
1: सो नॉर्मली अगर हम एक लेमैन या जो आम आदमी जो जानते हैं वो यही जानते हैं स्टेज वन टू स्टेज फोर, जिसमें जो जनरल परसेप्शन है कि स्टेज वन अर्ली स्टेज है और स्टेज फोर एडवांस्ड है, जो बिल्कुल ठीक है। बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि स्टेज फोर का मतलब ये है कि हम पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते।
0: ओके।
1: स्टेज फोर में भी क्योर रेट्स पॉसिबल है।
0: जी जी।
1: और स्टेज वन में भी कई बीमारियों में बीमारी एग्रेसिव हो सकती है। तो ब्रेस्ट की स्टेज वन और हम एक ओवेरियन की स्टेज वन और सर्विकल कैंसर की स्टेज वन देखें तो बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम एक ही बीमारी में स्टेज वन डिफरेंट पेशेंट्स में देखें तो वो भी बहुत डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द स्टेज, हम सिर्फ उस एरिया को नहीं देखते जहाँ बीमारी स्प्रेड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि बीमारी का आउटकम क्या रहेगा। सो आजकल हम बहुत इनकरेज नहीं करते हैं कि सीधा स्टेज वाइज हम आपको बता दें, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि हम आपको स्टेज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और उसका आउटकम बताएं। सो जनरलाइज्ड वो करना बहुत मुश्किल है, बट यस, जैसे एक पहले भी हमने बात की, जितना अर्ली ट्यूमर डिटेक्ट होगा उतना ही आउटकम्स अच्छे होंगे। इसका मतलब है वो लोकलाइज्ड है और फैला नहीं हुआ, जैसे से बड़ा होगा तो।
0: जी, आप तमाम पेशेंट्स को देखते हैं और ओपीडी में पता नहीं लोग कितने आते हैं, एक दिन में सैकड़ों लोग आपके पास आते हैं, तो जो विल पावर है एक पेशेंट की और साथ ही में जो उसके साथ जो केयर टेकर हैं उनकी विल पावर, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, वो कितने मायने रखती हैं?
1: वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है।
0: जी जी जी।
1: और इट इज़ नॉट पेशेंट स्पेसिफिक, अगर एक फैमिली में कैंसर है तो सारी फैमिली सफ़र करती है उसके साथ। सो एक पेशेंट का विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट्स मुश्किल होते हैं, लंबे होते हैं, लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व।
0: जी जी।
1: और इसमें एक फैमिली का डिसीजन होना या फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। सो इस कंटेक्स्ट में हम लोगों को काफी बारी पेशेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है, फैमिली मेंबर से भी बातचीत करनी पड़ती है। सो इट इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस।
0: जी जी।
1: बट इट्स नॉट कि उसमें कोई होप नहीं है, आउटकम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, होते हैं आजकल।
0: जी होते हैं, और बहुत सारी NGOs के नाम भी होप है, तो वो इस तौर पर आपके साथ मिलकर कार्य भी करते होंगे बहुत सारे NGOs।
1: डेफिनेटली NGOs की बहुत सपोर्ट रहती है, प्लस गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, बहुत पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, ड्रग्स मिलती हैं, ट्रीटमेंट स्पॉन्सर हो जाते हैं, दे आर टेकन केयर ऑफ। सो दैट वे आई थिंक गवर्नमेंट, NGO, मतलब एक ये एज अ सोसाइटी एवरीबडी शुड कॉन्ट्रीब्यूट, यू नो,

0: बेस्ट हम पेशेंट को दे सकें।
1: हमने बहुत सारे जो अलग अलग कैंसर्स को एक साथ जोड़ा है, क्योंकि एक पर चर्चा करने से कई बार लिसनर को लगता है कि केवल एक के बारे में बता रहे हैं, तो हमने तीन पर चर्चा की है आज। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बारे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी टीवी पे विज्ञापन देते हैं या सभी मीडियाज में बताते हैं कि बहुत इजीली क्योर हो गया, अब वो आम जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर लोगों को इस तरह आप बताना चाहें एज ए एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को होता भी है तो कितना इसका ट्रीटमेंट आजकल एडवांस हो चुका है और आसानी से भी ठीक किया जा सकता है?
0: ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है, लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है कंट्री में, बहुत सेंटर्स हैं जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, राइट फ्रॉम सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। सो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिसको भी कैंसर होता है, आप प्लीज़ एकदम वो मत होइए कि होप नहीं है। हाँ, देर इज होप, देर इज लॉट ऑफ होप। वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट करा के बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आजकल इतनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज और ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं

0: राइट फ्रॉम सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी. सो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिसको भी कैंसर होता है, आप प्लीज़ एकदम वो मत होइए कि होप नहीं है. हाँ, देर इज होप, देर इज लॉट ऑफ होप. वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट करा के बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. और ऐसा नहीं है, आजकल इतनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज और ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं कि अगर गॉड फॉरबिड किसी को बीमारी दोबारा वापस भी आती है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सो देर इज ऑलवेज होप एंड बहुत अच्छे से हम इलाज कर सकते हैं
1: जी. डॉक्टर भावना, जैसे आपने कहा कि वापिस भी आती है, रीअकरेंस जो होता है, तो कई बार पेशेंट की ओर से भी थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती है, कई बार वो फॉलोअप के लिए नहीं आता है, तो फॉलोअप्स कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं?
0: देखिए, फॉलोअप्स बहुत इम्पोर्टेंट है. वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो हम लोगों को डिजीज के बारे में, हम कई बार अगर कोई रेकरेंस का है वो पिकअप कर सकते हैं. प्लस हमें ये भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट है उसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स या उसके आउटकम्स क्या हैं. एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एट अ नेशनल लेवल कुछ अगर हमने कोई डेटा जनरेट करना होता है या हमने देखना है एक बीमारी का क्या असर आ रहा है या क्या फायदा हो रहा है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट.
1: जी जी जी. और मैंने फॉलोअप के बारे में पूछ ही लिया आपको, कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की रहती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, कितना गंभीर हो सकता है अगर ध्यान ना रखा जाए या फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाए?
0: आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब द मोमेंट पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट की बात सुनते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और वो कहते हैं साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे.
1: जी जी जी.
0: देखिए, अगर कोई इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट होगा, और ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. बिकॉज जहां आप बीमारी के लिए कुछ इलाज करते हैं उसके आसपास जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे इफेक्ट आता है, या हम अगर कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपीज की बात करें तो नेचुरली वो सारी बॉडी में रिएक्ट होगा और एक्शन करेगा. बट जो भी इफेक्ट्स हैं, ट्रीटमेंट्स इसीलिए स्टैंडर्डाइज होते हैं जब हम उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं. तो साइड इफेक्ट्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ऑल एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट्स, जो बहुत आराम से हम उनको टैकल कर सकते हैं. काफी बारी जो ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं विद द डिजीज रिलेटेड इफेक्ट्स, कि जो डिजीज है वो अपने सिम्टम्स भी देती है. तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा. और एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा कि पेशेंट अगर फॉल्टर कर जाता है, हमेशा पेशेंट का फॉल्ट नहीं रहता है, बट यस, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर एक पेशेंट साइड इफेक्ट की वजह से अपना ट्रीटमेंट रोक रहा है तो उनको अपने आप से ये सोच के नहीं रोकना चाहिए, उनको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बिकॉज वो एक टेम्परेरी चीजें होती हैं जिसमें से पेशेंट पुल थ्रू कर सकता है. बट आई एग्री, समटाइम्स साइड इफेक्ट्स रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की थेरेपी यूज करें. तो ये सब चीजें हमेशा पेशेंट को सारी एक्सप्लेन की जाती हैं.
1: जी डॉक्टर भावना, कई बार रिपोर्ट आने के बाद जब डायग्नोज हो जाता है, पता चल जाता है पेशेंट को कि उसको किसी प्रकार का कैंसर है, वो एक डिनाइल मोड में चला जाता है और किसी और तरह की थेरेपीज की ओर घूमता रहता है, कहीं यहाँ जाता है कहीं वहाँ जाता है, जो अनसाइंटिफिक वेज होते हैं, उससे कितनी देर हो सकती है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं?
0: डेफिनेटली वो उससे डिलेज होते हैं और हम उसको नहीं एडवोकेट करते, रेकमेंड करते. लाइक जैसे आपने बोला साइंटिफिक, सो हम जो भी प्रैक्टिस होती है एलोपैथी में या जो हम लोग करते हैं, दैट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, दैट इज व्हाई वी डू इट. बाकियों का हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है.
1: जी जी.
0: एंड बिकॉज इट वर्क्स दैट इज व्हाई ये स्टैंडर्डाइज रहती है. तो ये तो हम मतलब मैसेज में जरूर इफ आई कैन रीच आउट टू पीपल ये देना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम. अगर आपके पास एक कैंसर का डायग्नोसिस है, प्लीज आप रीच आउट करो टू द राइट पीपल सो दैट आपका जो ट्रीटमेंट है वो मोस्ट इफेक्टिवली और जल्द से जल्द शुरू हो सकता है. यही चीज अगर हम डिले करते हैं तो बीमारी हमारी वेट नहीं करती और बढ़ना शुरू कर देती है, और कई बार जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं लेट हो जाता है.
1: जी. और दिनचर्या की आपने बात की थी शुरू में, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, यंग लिसनर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं जो सुनने वाली हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए ताकि इस तरह की किसी भी बीमारी से वो दूर रह सकें?
0: टू एन एक्सटेंट प्रिवेंशन हो सकती है. तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो नॉट ओनली कैंसर के लिए है, वो जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, लाइक हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इन सब के लिए है. सो मेन है

0: स्टार्ट योर डे अर्ली, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज कीजिए, अवॉइड ओबेसिटी, अवॉइड स्ट्रेस, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, इन चीज़ों का जितना सेवन कम किया जाए उतना अच्छा है, एंड लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ. बीच में अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट कीजिए टू रिड्यूस स्ट्रेस. सो दीज आर द थिंग्स दैट इन जनरल हम कर सकते हैं. बाकी फॉर गर्ल्स इन पर्टिकुलर, यस, मैं ये जरूर कहूँगी कि आप नेचर ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया है हम सबके लिए. सो जो भी आपको प्लान करना है, प्लान योर फैमिली इन टाइम, ब्रेस्ट फीड द चिल्ड्रेन, यू नो, ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू विद नॉट ओनली कैंसर बट ऑल्सो विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल.
1: लेट मैरिजेस आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, और आपने भी इसकी ओर इशारा किया कि सही समय पे अगर प्लानिंग की जाए, फैमिली प्लानिंग की जाए, या फिर अगर मैरिज करना है तो सही समय पे किया जाए. तो कुछ इस तरह का आया है रिसर्च में, या इस तरह का आपके पास कोई, क्योंकि पीजीआई में लगातार रिसर्च होती रहती है, बहुत सारे पेपर सबमिट होते रहते हैं, तो आपका जो इशारा है वो क्या कहीं पे इस तरह की बातें हैं?
0: नहीं, ये मैं एक जनरल उस पर कह रही हूँ, बिकॉज हमें ये इसलिए रिलेटेड है, अगर हम सीधा ब्रेस्ट और ओवेरियन का रिस्क देखें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं एक हार्मोन एक्सपोजर को लाइफ टाइम में. सो वो हार्मोन एक्सपोजर जो है वो ब्रेक होता है, अगर हम बात करें तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चे होते हैं, या जितना लंबा वो एक्सपोजर रहेगा. लेट मैरिज हम जितना पुश करेंगे, जितना हम बच्चे पुश करेंगे, इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड, अबाउट जितना हमें पुश करेंगे तो हम वो एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं. एक मदर का और भी चीज़ों के लिए रिस्क बढ़ा रहे हैं, एक लेडी का, इट इज़ नॉट ओनली कैंसर, हम और भी रिस्क बढ़ा रहे हैं बोथ फॉर द चाइल्ड. सो दैट इज़ व्हाई वी से. और अगर हम बात करें लेट मैरिज की, तो पढ़ाइयाँ या आजकल करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो एक यू नो डिफिकल्ट चीज़ रह गई है. बट फॉर वर्किंग वेमन ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं, लाइक आप ओसाइट या वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपने ओवरी के फॉलिकल्स जो प्लान लेट कर रहे हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल है. बट यस, मैं अगेन वही बोलूँगी, जो नेचर ने हम लोगों के लिए एक बनाया है, वी शुड ट्राई एंड एडियर टू इट एज मच एज पॉसिबल.
1: जी, डॉक्टर भावना राय, प्रोफेसर रेडियोथेरेपी व ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमने विस्तार से ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर पर, जो महिलाओं में विशेषता होता है, उसके बारे में चर्चा की. आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: इसी के साथ FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. अश्विनी कुमार को आज्ञा दें, आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का.
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन.
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन.

अपने वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएं। सीट बेल्ट और हेलमेट का हमेशा उपयोग करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स पर अपने वाहन को खड़ा ना करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच

0: ईयर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: सुनेहे मित्रां दे तुहाडे दिल खिचवे सुनेहे तुहाडे दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल जी सुनेहे मित्रां दे.

0: अभी आपने सुनेही मित्रांति प्रोग्राम सुना। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजे हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जाँच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 12:05 हुए हैं। अब हम अपना प्रसारण आपके लिए

0: विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल।

से लो मैं चमन को चला वीरन से, क्षमा है कब से जुदा परवन से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से, दिल

मिल के वो पहले बहुत शर्माएगी, मिल के वो पहले बहुत शर्माएगी, आगे बढ़ेगी मगर रुक

नहीं है मन बना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मट्टी में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।

और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है खजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सही लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्णा।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, इस समय 1 बजा है। आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर और श्रोताओं शाम 6:10 पर भी आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन पाएंगे। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर। ये प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए अपनी जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी।

विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर, फिर वहीं से दोपहर 2 त्रिवेणी कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए रिले किया करते हैं हिंदी में समाचार। समय नोट करें, दोपहर 2:15, शाम 5, शाम 6, रात 8:45 और फिर रात 11 भी। सदाबहार नगमे सुन सकते हैं आप हमारे मुंबई केंद्र से दोपहर 2:30 पर। वहीं से दोपहर 3 होगा कार्यक्रम सखी सहेली। आज शाम 4 पिटारा कार्यक्रम में सेलुलॉइड के सितारे सिलसिले के तहत आप मुलाकात कर सकते हैं अभिनेता विपुल देशपांडे के साथ। इस बातचीत का आज दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। शाम 5:30 पर श्रोताओं हम आपके लिए प्रसारित करेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हमारी शाम की सभा में 6:30 पर आपको सुनवाएंगे अमृत पानी। शाम 7 विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला। हमारे केंद्र से हम आपके लिए प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित करेंगे शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। कुछ पंजाबी गीत भी आप सुन सकते हैं। समय रहेगा शाम 7:47। पंजाबी गीतों का ही कार्यक्रम सुर सांझ सुनवाएंगे आपको रात 10:32 पर। फिर हमारे मुंबई केंद्र से रात 8 रिले करेंगे हम आपके लिए कार्यक्रम हवा महल। आज इस कार्यक्रम में होगी झलकी बाज आए ऐसे फैशन से। चितलो कार्यक्रम में आप सुना करते हैं नई फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम रात 8:15 पर होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9:00। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार श्रोताओं संगीतकार रोशन हैं। उद्घोषक की पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन सकते हैं रात 10:00। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी उद्घोषिका ममता सिंह। तो ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

0: आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद आप प्रादेशिक पंजाबी समाचार सुन पाएंगे जो हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं,
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, कारीगरों

0: स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया गया है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है, इस एक्सपो में 90% MSME आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं, ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से निर्धारित अवधि में पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य प्रगति परियोजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए 75 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि किसी परियोजना की कार्य अवधि नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे परियोजना की लागत भी बढ़ती है और जनता को भी उसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उन्होंने पंचकुला की एप्पल मार्केट और गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल फूल सब्जी एवं बागवानी मंडी में बनाए जाने वाले शेडों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के निर्देश दिए ताकि इन मंडियों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में 20% हरित क्षेत्र विकसित करने और सड़कों के दोनों तरफ पौधे लगाने की हिदायत की। उन्होंने मंडी में रेनीवेल लाइट एवं साउंड तथा बरसाती पानी के भंडारण एवं उपयोग के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कल हिसार के बरवाला में सौंदर्यकरण और विकास को नई पहचान देने वाली महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने हिसार अग्रोहा व टोहाना रोड पर बनने वाले भव्य स्वागत द्वार की नींव रखते हुए कहा कि इन स्वागत द्वारों के निर्माण से बरवाला की पहचान और अधिक सुदृढ़ होगी तथा नगर में प्रवेश करने वाले लोगों को एक आकर्षक और आधुनिक प्रवेश द्वार मिलेगा। यह परियोजना शहर के सौंदर्यकरण के साथ साथ बरवाला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी नई मजबूती देगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस द्वार के निर्माण पर लगभग 84 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार अग्रोहा रोड पर स्वागत द्वार पर लगभग 98,31,500 रुपए तथा हिसार रोड पर स्वागत द्वार पर 77,05,000 रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट मंत्री ने लगभग 3,40,70,000 रुपए की लागत से बरवाला टोहाना रोड पर बने स्वर्ग आश्रम में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी परियोजनाएं तय सीमा में पूरी हों ताकि आमजन को उनका लाभ शीघ्र मिल सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और 200 रुपये के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नूह में लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसकी 4 दीवारी बनने का कार्य शुरू कर दिया गया है जो आगामी 2 साल में पूरा हो जाएगा। चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिला के नसीबपुर में राव तुलाराम शहीद स्मारक बनाया जाएगा जिसकी ड्राइंग तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

आपने साहिर की ये रचना सुनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, धुन रोशन ने बनाई। फिल्म का नाम था चित्रलेखा। अगला गीत सुनते हैं, उससे पहले ये एक संदेश।

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम भीगी रात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन रोशन की है।

और लीजिए अब सुनिए ममता फिल्म से एक गीत। इस गीत में मोहम्मद रफी के साथ आप आशा भोसले को सुनेंगे। ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, धुन रोशन की।

0: आप सुन रही थी फिल्म संगीत। आज श्रोताओं, हमने इस कार्यक्रम में आपको रोशन के संगीतबद्ध किए गीत सुनवाए। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: श्रोता, 1:30 हुए हैं, अब हम अपना प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: विविध भारती को सुना करते थे, उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें, रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में एक बड़ा सा रेडियो लगता था, उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया, उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था, सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं, कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट लाके दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इंसानी जज्बात दीवानगी के हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं न कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज है।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का. आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की. आप सभी का बहुत धन्यवाद. आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ.

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों

0: हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे।

मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई

0: सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा

0: दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है पूजा के फूल, इस फिल्म से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
2: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
1: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
2: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
2: हाँ।
1: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
1: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
2: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
1: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
2: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
1: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और ये है कि उनका इंतजार होता है,
2: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
1: मुंह में राम, बगल में छुरी।
2: तो बिल्कुल, हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें। पहला गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते ही

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया
1: करते थे। लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तो परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन

0: नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।

0: परांजपे की उजाले उनकी यादों के 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।
2: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
3: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
2: अच्छा?
3: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
2: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
3: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
2: हाँ।
3: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
2: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जेवो वेश तेवी वार्ता। यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
3: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वही एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
3: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
2: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
3: और सही लिखी है ना। वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
2: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
2: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं।

0: है, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है,
0: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
1: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: अभी आपने कहा
1: हाँ।
0: हम सब बैठकर बतियाते थे
1: हाँ।
0: हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीता।

0: देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत में सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है, और

0: बाकी लीजिए, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के

0: लिए वहाँ काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो है बाहर जब हम खाते

तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम

0: हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
1: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहरी खाना पसंद करती है, और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
0: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
1: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
0: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना वहां बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है,
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, छोटी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण

0: समझाइए,
1: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं।
0: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
1: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी कि बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा

0: कैरेक्टर है
1: जी,
0: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
0: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
0: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा। नला ठीक है, मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी।
0: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी,
0: ताकि वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा
1: था। ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का।
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा।
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी।
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है।
1: अच्छा।
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा।
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा।
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे। लाइक ठीक है छोड़ यार, मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए। मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसके फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है
1: जी जी,
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, गुड Do it. It is there in the film.
1: Yes, yes, yes.
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को भूलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है।
1: जी जी जी।
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं तो उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: है। बहुत जरूरी
1: है। हाँ।
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी से भी वही हुआ
1: जी।
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो

0: जाने को बोल दें।
1: अच्छा,
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, पर महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते हैं कि, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
1: हाँ।
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है, महात्मा बोल रहे हैं
0: अब जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ, लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो हाँ। थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है, ठीक
1: हाँ।
0: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, एक तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। सर ये ऐसा ऐसा है बापू, कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक्ड इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। So this is what, how it happens.
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीच का भी वैसा ही रहा,
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है,
0: बड़ा नाम है, शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया
1: जी।
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना
1: जी।
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ।
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था, तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता, और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं
0: जी।

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति की मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ
0: जी।
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय
0: जी, जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल
1: 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो जी, एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहे तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो
0: जी,
1: मैं उनसे सीखा
0: जी।
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है
0: जी, जी।
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूँ
0: जी,
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं,
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत
0: तुरंत आना,
1: तुरंत यू फील सो गुड,
0: हाँ हाँ,
1: कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया
0: जी।
1: तो ये चीज जो है

0: जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है।
1: हाँ।
0: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक करेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में।
1: जी।
0: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल।
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और जो एक बार हो गया हो तो फिर।
1: जी जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था
1: जी,
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे। तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते
1: जी,
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है।
1: हाँ।
0: वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे
1: जी।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए।
1: अच्छा।
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा।
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा।
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है।
1: अच्छा।
0: और लाइट कॉमेडी है।
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना।
1: हाँ।
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
1: जी।
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी।
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है। IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
1: अच्छा।
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि YouTube पे अवेलेबल है।
1: हाँ।
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी,
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9-10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गमा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी,
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
1: जी, आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा,
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी।
1: तक जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं
0: जी।
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब। तो वो कैरेक्टर मुझे आया, हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं।
0: अच्छा,
1: उनको अच्छा लगा और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
0: अच्छा,
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का।
0: जी जी जी।
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा,
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी, जी।
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा,
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
0: अच्छा,
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा,
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा,
1: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी जी,
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
0: अच्छा,
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
0: हाँ,
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स
1: हो सकते हैं
0: जी।
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ, हाँ।
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
0: जी जी।
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। इस टाइप का एक कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
0: जी,
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
0: अच्छा,
1: तो बरसाते मेरा एक

0: ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला. एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
1: जी.
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल.
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था. बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही.
1: जी जी, दैट वे. क्या बात है. कार्यक्रम के इस मोड पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
1: जी.
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही.
1: हाँ हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें.
1: हाँ, वो फिल्म
0: शाहूक भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया और बहुत ही खूबसूरत है. उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी,
0: और ये गाना चल रहा है. और अभी बारिश आने ही वाली है.
1: हाँ.
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन. और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो. हाँ. और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में पहुंच जाते हो.
1: क्या बात है. चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी.

0: मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन विद कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेट्री फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी, जी
1: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा।
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके मुझे पकाएंगे
0: जी।
1: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
0: जी।
1: मैंने वागले के बाद में अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
0: जी।
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
0: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी,
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो, क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह।
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कोई मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं
0: जी
1: जान से लड़ते हैं
0: जी,
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती हैं वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी
0: जी।
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका

0: कथकाटी भगवान की दया से कथकाटी में थोड़ा मैच कर लेता हूँ
1: जी जी,
0: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है। मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है,
1: हाँ,
0: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
1: वाह,
0: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
1: जी
0: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
1: जी जी
0: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
1: सीखने की जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ,
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
1: हाँ,
0: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
1: क्या बात है
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं

0: इस इंडस्ट्री में,
1: हाँ.
0: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो. तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था.
1: अच्छा.
0: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था, कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
1: जी.
0: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 female, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर कलाकार.
1: वाह वाह.
0: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल. उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
1: जी
0: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया. ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया. बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए. और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है
1: जी.
0: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी.
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे.
1: क्या बात.
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है. अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा. तो इसपे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं.
1: अच्छा.
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं.
1: क्या बात.
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग. ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं. तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो.
1: अच्छा.
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो. संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है.
1: हाँ.
0: पॉजिटिव बात है.
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है.
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये 2-3 साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही. लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे. जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है. इट इज विथ मी.
1: अच्छा.
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है.
1: जी, जी.
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम. विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं. और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं. मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से. और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं. और यहां हम कोई गाना सुनते हैं.
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले.
1: हाँ.
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो.
1: हाँ.
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है. लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे.
1: हाँ.
0: तो
1: नाम मुख्य कलाकारों में तो है
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं
0: है. महत्व नहीं है. तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास.
1: हाँ, हाँ.
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके
1: जी.
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा. शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा.
1: हाँ.
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं. तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है.
1: जी जी जी.
0: तो
1: जी,
0: मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग.
1: ओहो.
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था.
1: क्या बात, क्या
0: बाकी.

0: संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा, यहाँ पे कौन नहीं आया है।
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना।

0: आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये विश्वभर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12%

0: तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। ये घटना कल रात कोहाट जिले के बाहरी इलाके में स्थित मालिंगिन गांव में हुई। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: आगरा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं हाईवे फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं सुल्ताना और ज्योति नूरा की।

दोस्तों अभी आपने सुना गर्म मसाला फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत धूम फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में।

आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए सुखिंदर सिंह और सपना बस्ती की आवाजों में दिल से फिल्म का गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना दिल से फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता

0: के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे?
1: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न

0: इसका उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
1: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा,

0: लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुना भी कहानी, चुप क्यों हो, सुना ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश।

0: रंगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे?

0: मेरे साथ खेलोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़ी मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मैं।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अब आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਹੂ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है, सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज

0: सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र तुम बोल रहे 107.2 मेगाहर्ट्ज़ थी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਕੇਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, निर्माण कार्यों में निम्न गुणवत्ता या नियमों की अनदेखी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने तेल और ऊर्जा के कम होते स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जरूरी बताया। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष सुमन सैनी ने लाडवा अनाज मंडी से स्वच्छता ही स्वागत अभियान का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मोबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000

0: से ऊपर एग्जिबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण QAA द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और विभिन्न विभागों में किए जा रहे तकनीकी ऑडिट की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवनों, विशेष तौर पर सड़कों पर परत बिछाने जैसे कामों में टेंडर में लिखे पैमाने की हर हाल में पालना हो। निर्माण कार्य में कहीं भी लापरवाही, निम्न गुणवत्ता या नियमों की अनदेखी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि तेल और कोयले के कम होते स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री मोदी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कर देश को वैकल्पिक ऊर्जा का एक और स्रोत देने जा रहे हैं।
2: हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल कोयला ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को और हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं।
1: हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने स्वच्छता ही स्वागत अभियान के तहत आज लाडवा की अनाज मंडी में विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्रीमती सुमन सैनी ने सभी से स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की।
3: स्वच्छता ही स्वागत अभियान के तहत आज लाडवा विधानसभा में आना हुआ और सुबह गुड़ा में प्रोग्राम किया और अब लाडवा में है और कल के प्रोग्राम बैन और पिपली में रहेगा। मैं सभी से अपील करती हूँ कि सभी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे।
1: इससे पूर्व सुमन सैनी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और संगत को 17 जुलाई तक को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे के दौरान कुरुक्षेत्र को सिख संग्रहालय की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर आज कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने स्वच्छता से स्वागत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लघु सचिवालय के बाहर खुद झाड़ू लगाया और नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, नगर पार्षदों व आम नागरिकों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा में स्वच्छता से स्वागत किया जाएगा।
4: हरियाणा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत वैसे तो हर वर्ग में हर दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन स्वच्छता को लेकर के बहुत यूनिक है, हट करके है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 से लेकर के 19 जुलाई तक स्वच्छता ही स्वागत कार्यक्रम उनके आगमन पर रखा है और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला से कल स्वयं की थी और ऐसे ही हमारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने करनाल से इस अभियान का शुभारंभ किया था। तो आज उसी के तहत हमारी जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुभारंभ किया है।
1: भारतीय सेना में कार्यरत ज्ञानेंद्र उपाध्याय के साथ पंचकुला के मुख्यालय पश्चिमी कमान में रहने वाले उनके 5 वर्ष 2 माह के पुत्र बाल पर्यावरण प्रेमी रुद्रांश उपाध्याय ने अब तक 1455 पौधे लगाकर मिसाल पेश की है। मूलतः वाराणसी निवासी रुद्रांश ने बताया कि इनमें से 1427 पौधे जीवित एवं संरक्षित हैं और विकसित हो रहे हैं। उसके द्वारा अधिकांश

पौधे पंचकुला, चंडीगढ़ एवं चंडी मंदिर छावनी में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र कार्यक्रम में उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया। उसके उत्कृष्ट पर्यावरण योगदान के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना लागू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत और विदेश के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 50 लाख रुपये तक का योजना लाभ दिया जाएगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज थी।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हरिहरन और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं पीके मिश्रा, संगीतकार हैं एआर रहमान। फिल्म का नाम है रोजा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अनपढ़ इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार है मदन मोहन।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीत की बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने, तर्ज है मदन मोहन की।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं। स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप कार दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार कैफी आजमी के बोलों को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है मेरा साया।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना है मदन मोहन की और फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।

0: अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा दिगार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है मदन मोहन और फिल्म का नाम है लैला मजनू।
1: अब अगर हमसे

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है मल्हार।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

बाज आए ऐसे फैशन से। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको नाज़नीन का लिखा ये प्रहसन सुनवा रहे हैं। इसके निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: Shaving box. अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे वो भाई रेहाना, ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
1: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में ही हूँ, फिर भी यूँ चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
0: इसमें वो रेजर नहीं है।
1: उसे तो मैंने फेंक दिया।
0: फेंक दिया? लेकिन क्यों?
1: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
0: क्या मतलब?
1: अजी वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
0: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कभी तो खरीद कर लाएगा और आप तुमने फेंक दिया।
1: जनाब आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
0: जी
1: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप है कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
0: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का क्या होगा?
1: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर, मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
0: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरस डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा।

0: कहो कैसा था रिजल्ट? शेप ठीक से बनी कि नहीं?
1: हाँ ठीक बनी। कंबख्त ने गाल को जगह जगह से काट कर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो
0: मैं था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखने से कमाल। ये लो
1: लो
0: चाय पी लो।
1: अरे ये कब कहाँ से आ गया?
0: कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
1: लेकिन
0: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
1: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो भी ठीक ठाक था।
0: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
1: अब तुमसे तो वो बहस है जिसके पास फालतू दिमाग हो।
0: इसमें बहस कैसे, वो मिट्टी के कप निगोड़े खुड़क चुल्लू जैसे मुझे एक आंख भी न भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारे शहर की मैं तो पानी पानी हो गई।
1: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
0: तो और क्या करती, एक बार तो ना कर गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपने बच्चे को चुना खुदा?
1: जी नहीं कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखी है, भले मैं कंगाल हो जाऊँ।
0: तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसे से थोड़ी ही खरीदा है।
1: तो फिर क्या आसमान की टपका है या आपकी वो खालाजान खरीद के दे गई है?
0: तो भी अल्लाह न करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
1: क्या मतलब, जहाँ तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
0: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहले लाइफ में रह गई थी।
1: क्यों क्या हो गया था उनमें?
0: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे। उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना,
1: देखा था,
0: कितनी खूबसूरत डिजाइन थी इसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
1: मखमल के आगे ताज। क्यों
0: हाय तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
1: लेकिन मेरी अच्छी बेगम, अच्छी बेगम भाई, मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था कि तुमने उन्हें पीछे पर भेंट चढ़ा दिया?
0: अरे वो चॉकलेट फिनिश की मोरी वाली पतली में थी कि हो रहा था, अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और मैं कब घर से बाहर निकालूं।
1: बहुत खूब, खाला जान ने टी शर्ट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल चलने का। भाई बहुत अच्छे, कल आगे कोई चचीदान मेरा मजाक उड़ाए मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल देना और कोई नया सोहन ले आना घर में।
0: क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो, जरा सोचो इन बेकार पुराने फैशन के कपड़ों से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई।
1: काम की चीज? वाह जितनी कीमत की बुलबुल नहीं उससे ज्यादा की उसकी उड़वाई।
0: ओह एक कत्ती की पाई से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफ ही करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं।
1: वाह वाह वाह क्या कहने हैं किफायत शुआरी के। देखो रियाना तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ
0: ओह खुदा जाने तुम कब समझोगे।
1: मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन करके आ जाऊँ, तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट?
0: नहीं नहीं अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है, वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे। फिलहाल ये लो इसे पहन कर जाओ ऑफिस।
1: ये
0: हाँ
1: ये पहन कर जाऊँ?
0: हाँ पहन कर देखो मजा आ जाएगा।
1: ये सूती पैर पहन कर ऑफिस जाओ?
0: ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जींस।
1: इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से, मैं यार भी नहीं पहनूंगा।
0: क्यों नहीं पहनोगे, पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाई जान तो इसके चक्कर में पड़ोसी देश तक जाते हैं और
1: इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या, तुम उन्हीं को यह तारंगे का गुलाब पहनाना समझी?
0: आखिर इसमें बुराई क्या है?
1: एक हो तो बताओ भला, ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी सिलाई तो यूं लगी है जैसे चीटियां मिल रही हो, और तो और जगह जगह तो रंग भी उतर चुका है।
0: जवाब नहीं तुम्हारा, अजीब रही तो इन पैंटों की खासियत है।
1: जमी रंग उतरना?
0: जी हाँ इसे ही तो कहते हैं फेडेड जींस। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी।
1: हाँ खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान।
0: पर ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ।

0: लग रहे हो, क्या फिक्र है? आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
1: बता रहे तो इस मार के हाथ लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, वो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
0: अब ज्यादा दर्द कम उसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
1: लंच इस बालिश भर के डिब्बे में?
0: हाँ, आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
1: क्यों, मेरा वो चार कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
0: कुछ तो अगले से काम लो, भला इस पेन के साथ वो घंटा घर माल का कटोरदान मैच करेगा?
1: और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
0: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं, और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
1: क्यों?
0: टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेजान हो जाता है।
1: बस बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
0: ये रहे।
1: ये क्या है?
0: जूते हैं और क्या है?
1: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
0: अजी मिट्टी डालो पुराने मेजर कुमार जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
1: लॉन्ग बूट?
0: जींस पर यही पहने जाते हैं।
1: सुनो रोहना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
0: वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
1: अच्छा, बस बस, नया फैशन नया फैशन, ला दो जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी, या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
0: आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
1: आदत क्या बन जाएगी?

0: तुमने मुझे बुलाया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन। हाँ हाँ आ जाओ, देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिरी तुम है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: चल हट कर मुही, बड़ी आइडिया है डॉलिंग वाली।
0: ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।
2: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये दिखाई कौन है?
1: अरे भाई ये लैला है। लैला,
2: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
1: मेरा ताल्लुक? मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का मनवाल से था। मैं इसका मन्नू हूँ।
0: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से मैं उसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो।
2: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? और तुम मुझे, मैं अभी तुझे मजा से खाती
1: हूँ। क्या कर रही है रहना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
2: क्या ये तुम्हारी बीवी है?
1: जी हाँ, ये मेरी नई शरीर की हालात है।
2: या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
1: नहीं, अब क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए, मैंने अपने सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो?
1: कह रहा हूँ और आके आज के जमाना तरक्की रहा है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए लोग अपना रहे हैं। इसलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी लूंगा।
2: मैं जाना यार पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो वरना।
1: वरना क्या?
2: मैं जान ले दूंगी, खुद तुझे कर लूंगी।
1: ओके, लेकिन खुद कभी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
2: ठीक है, तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
1: हाँ जाओ, शौक से जाओ।
2: क्या मतलब?
0: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
2: कौन शैतान कहेगी?
0: आबादी मैं।
2: कमबख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी ना पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
1: खामखा नहीं रहना, इस पल भर की उलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नए फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
2: चलो हटो, तुम बड़े बोल।
0: अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ।
2: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
1: चाय?
2: हाँ चाय। आपको कोई ऐतराज है?
1: ऐतराज बिल्कुल है।
2: अच्छा, मैं भी तो सुनो, आखिर क्या?
1: वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टीशर्ट में पियेंगे।
2: हाँ बाबा, वही पुराना टीशर्ट लाऊंगी, मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में।

बाज आए ऐसे फैशन से, नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ दिलीप भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

दिल्ली से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का और फिल्म का नाम है सत्या।

0: पुरानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गीत सुदेश भोसले, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत, दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग कर ली। स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट।

0: हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
6: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
8: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में

0: सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते

0: तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने

0: याचिका करताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार हैं मदन मोहन।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों कार्य

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, धुन है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है संजोग।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार मदन मोहन की मुनफरिद आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम आप जानते हैं, दस्तक।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मन्ना डे, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा, एसडी ताबिश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

0: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: इंसान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हैं धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान।

संगीतकार रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब ये स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक।

0: मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।
1: मैं

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। अनमोल होते हैं प्यार करने वालों के नगमे, सितारों से कढ़ी चूनर ओढ़कर निकली है रात की परी, तब सजी है महफिल मोहब्बत के तरानों की। सितारे करते हैं जुगलबंदी हवाओं की थाप पर, लंबी रातें छोटी हो जाती हैं इस गूंज के साथ।

रात ने हवाओं से भेजा है पैगाम, आसमान के नाम। सुर्ख नीले आसमान पर फैल गई है लाली, नजर आ रही है चांद की परछाई। इस खूबसूरत फिजा में मन लिख रहा है प्रेम के गीत, कलम से झर रहे हैं सिर्फ प्यार के अल्फाज।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमोहर सा सुंदर लगता है, जब छा जाता है नशा प्यार का, छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। नींद में देखा था एक सपना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया ख्वाब और वही ख्वाब बन गया जिंदगी का मकसद। मन में कचनार की कलियां फूटने लगी, फूल बनकर महकने को आतुर हो उठी।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से मिट जाता है जमाने के लिए रंज, नजरों को इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका हो इंतजार।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: लोहन सुनो मिस पूजा का गाया गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता

0: सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते 11:05 हो चुके ने। हुण साडी अज दी सभा खत्म होंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।